0: नुआ दी है 1 MHz दिवे ही FM मैं दुरो नमा दो वागो तु
1: अल्लाहु अकबर अल्लाह

0: मुझे सिर्फ तुमसे बात करनी है।
1: रोक लो तो बात कर लो।
2: अल्फा अल्फा प्रोग्राम उसका जुनून है और जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार देता है। मैं जो बना रहा हूँ वो इतिहास है। फतेह को रोकोगे कैसे सीता? अपने जंगल का शेर है वो।
3: और मैं तफसील में हफ्ता का मैं बलाली दे ट्रेलर की गीलन दिवे ही उफेद में कमवा दें एम में अवह ओलिंपस सिनेमाया नुकुतमा हम जेफवा फिल्म गीलन के ट्रेलर आदि अल्फा बी फिल्म के ट्रेलर के मच्चा गीलन ओलिंपा अंगनानी जून माह के तीरी होगा आदि अल्फा मुली दुनिया की सिनेमा तक रिलीज कुरानी जुलाई माह के तीन एक मैं हफ्ता का रिलीज भी इतरो बाइंग एहन ट्रेलर तक का टीजर तक बलायर मैं हुकुर तो रिलीज वा पिक्सा के टॉय स्टोरी फहें स्टार ट्रेक स्ट्रेंज न्यू वर्ल्ड सीजन हाथरी के फुरी हम ट्रेलर श्रेक फहें के फुरतम टीजर आदि डिज्नी के हेक्स के फुरतम फिल्म वेसी में ने एनिमेशन आदि साइंस फिक्शन शौक वेरवा बेफुना मैं बलाना रंगल उफेदुन तक एहमति बेफ आदि बला नुलाकम वाणमा मैं ट्रेलर तक बलाला यूट्यूब वर फसे हम फिन्नानी इतर बैठक दियोंगे कुरिंग अनिका भी समा रीति लावे मिकेनेस्तेनी।

0: OST.
1: Demyoti hurihai hunterenge emme favorite segment ade OST. OST mi pam mi genesteni filmakun nuata drama ikun mashur OST lavin. Mifar mi hoali mi ke madu ahartakege kurin release wi muli duniye control kolli lave ke denne vitane. Kaveni ge hafta taka Instagram reels taka radio takun hama emme sikun takavis milawa adu kendi kendu de. आदि मी हफ्ते में होवाले लवे की ब्रह्मास्त्रा पार्ट वन के केसरिया में लवा लवकिया फनी अरिजीत सिंह अरिजीत सिंह के मिलावे मी हफ्ते आगे एमएफएस शो निम्माला फ अरुण बकेलाना अरुण उम्मीद करनी मी हफ्ते आगे मी शो एक ही विस्ती बेफना शागुर बैठ के गेनिस देवनु शो एक वी कमं इराद कुरिव्या अन्न
0: OST.

0: Game on!
1: Ludike Megherz TV film Migadi Kuria again the game on me. Hafta age shoga shura minishura. Koba kinavani.
2: Barabar.
1: Barabar. Tayaru. Inam fenage do.
2: Naba.
1: Inam benum weba.
2: Adam benum.
1: Ni sabangas mama seke kura fi inam denjena do. Shura emima. Vara fase maseke teke mihir. Inge team baye meoti furutama baye ki ka kuria dani dem filmi daire aga waka dakka liro raja ki filmi daire aga fannanu ki haver ka shura honge. Nang ki alange geneta.
2: Alo kan dengan engkau bukan nyamuk, emak kuri ke mih hundo engkau ni, kak kuri.
1: Macam apa tiap hari mo? Tiap, abis kamera nuna femmeter nuna mih sura hong, hebi mihinga furtam bayai kik kuri ata.
3: Beat the buzzer. Beat the buzzer.
1: Buzzer ke wagut 1 minit ke wagut kole mide ninge shura ho shura ho vi shura ho ti buni hen kuri ge filmi daira ghar ka ter refund nanu ge nan tak kiyala sau vi hover gina hama ko de den vi era molu vi shura ho ne hem buna kam ba na moli season ga ves fasha wagut fashe
2: niyoma
1: yope
2: copies mohamma season washia ishfan
1: Kiri yati salah mebi.
2: Dengar. Muhammad kiaf indo.
1: Muhammad kiaf.
2: Ma kiaf sih, aku dengun nani. Ravi. Hamdan. Dengar boleh ni.
1: Dihe bercengeng.
2: Dihe bi ada dihe ngapa tu?
1: Wan, wan, wan, wan, macam wan.
2: Aasha.
1: Aasha kiaf, Shifa.
2: Shifa, dengar.
1: Bagus tu amal. Egar, ini ke pura mati, ini maranggal, inge shura. Mi emme fahum, fahum ke tarihe ke balal awuny kom film, me divi film aka.
2: Ada orang dosu doguna ada punya fahum ke tarihe ke divi film aka. Ane kan tangkolek kene beri fahinna.
1: ए कौन फिल्म है
2: ए कि मैं अलीफा
1: अलीफा हम तांगकोले बेलोने
2: तांगकोले बेलोन
1: ए कि ने भी फिल्म तक कम होनु था नहीं था
2: नों दे आलोक नो यहाँ बड़ा बागुतों नो आने का बेकार कंगो
1: कि ने अरे हाँ मैं शुरा हो गया यार तो दो है सिर्फ़ को हमें कहने बोर्ड बेरा हूँ से गंबाती होने नों या कौन का
2: वाजीफ़ा
1: फुटबॉल कोले मो वाजीफा ए दमो बड़बेरु जहां मो देन किने फिल्म बदन वगुत देनी द
2: देखो ना ना निदुन द
1: आ किरी अमिल अमिल मी है वगुत कोले मे देवेने हमे अने गो है नो इंगे शुरा हमारे रंगल कामयाब कॉफी मे बै गैगण का मी 11 वीमा ए बैंक फास्ट जक म शो बला ने कुरी के फन्नाणु ग वहा क दक्का लाइफ कुरी के फन्नाणु गे मसे के तिमने इंगे ने कुरी के फन्नाणु कुरी के फिल्म बला औड़ो नि
2: आ कोरी का कुडायर बलाणन
1: एमे कामुदिया फिल्म की को बायर मिहारु से फिल्म के वहा कदा कलरा मि फिल्म बीट नु कुरवेने राज्य के आती हम मिवरु के फिल्म में तिमन नु बदम में आती एक हासिल में बंद
2: एक हाला फिल्म में दो कोरी का फिल्म का
1: निसाद कद एक कला या नु लाफति संदवर नुनी या जल जल
2: फति
1: संदवर हितन हितन अरे फेम में ऑप्शन तो के हिमन आवेस मिलेंगे फति संदवर की तफर बला लेवन
2: फति संदवर बेलिंग हम ककी के बुनाने देंगे येरो हुन्नाने को मेरे को तबियत गेगा सीडी नोने या हम ऐका हाल इच्छता देंगे हमें हम आड़ू आड़ू आगे बेले ना बतान्दन करों
1: एम्मे गिना बे फिल्म का फतिसन दरवाने एम्मे में एगोतन फाहा कोल्ले वे फाननानो ने केरो को फाननानो तेरे में खामो दरनी काको
2: येरो का देंगे हम एम्मे फेवरेटी हम अबदुस यूप पे दो
1: मिहारो से यूप पे मिहारो गेस मिहेता यूप पे के हम अबदुस यूप पे गेची बेले वहा के एरो
2: यूप पे कॉपी से
1: मे एम फाहु के तारी गेम हो गेची की वेनु बला मेरे
2: मिहार अने हम वगु
1: तो रोने
2: तो बदम इस बेनो
1: में ओके एमे मि देन शुरू हो बद वर्ष उम्मीद को वर फिल्म बला फका मंगे होना ने हां इंगा अने के सम बोर्ड पर मुबारक के हे वल्ला के लवे इवाल दिपत को लाने

0: Maldive FM, nur die Ecke Megahertz.
1: राख के ढेर में चलते हुए शोलों को हाथ मत लगा, चल जाएगी।
2: नाम मेरा शबनम है, पर आग तो मैं भी हूं शाखा।
3: दिल जले, दिल जले, ओ लाले, यहां तो सभी दिल जले हैं।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

हो तुम रेत के ये महल, जिनको एक रोज खुद ही मिटाओगी तुम। आज कहती हो इस दिल जले से प्यार है तुम्हें, कल मेरा नाम तक भूल जाओगी।

0: एक पल में जो आकर गुजर जाता है ये हवा का वो झोंका है और कुछ नहीं। प्यार कहती है ये सारी दुनिया जिसे एक रंगीन धोखा है और कुछ नहीं।
1: रीत आप तो विस्तृत